0: मानो विसर गए अपना थी अपना आपे ही कार सवारी है कसवारी है कसवारी है
1: औरी आपे एक रह क्यों कलापे तारी है देखी स्ता अपना तरकची पक्की सारी है जो आया सो चालसी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण

0: बात उसी हिंदी से समाचार सुनोगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

आया द्वार तुम्हारे राम, आओ मन दे द्वार ते दस्तक दे, ते मन विच बैठे उस परमात्मा नू याद करिए, उस नू मिलिए ते अपने इन्हां पलां नू सार्थक कर लिए। तुसी इस वेले सर्वण कर रहे हो भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 1,00,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

फौजी वाली प्रोग्राम 1:15 बजे होएगा, बाद दोपहर 2:30 बजे तो सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। रंगली धरती प्रोग्राम सुसी अज जीत लाल लहरी ते साथियों पासो माता दे भेटा सरवण करोगे। दूजी सभा च शाम 4:02 ते पंजाबी फिल्म संगीत का प्रोग्राम पेश करांगे। शाम 4:30 बजे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 बजे सरवण करोगे प्रोग्राम गुरबाणी विचार।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स, डीटीएच की आकाशवाणी पंजाब सेवा का जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर के 6:55 हो रहे हैं। कुछ ही देर बाद संस्कृत में समाचार सुनोगे।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे. अथ वार्ताः. भारतीय जनता पार्टीति दलेन पश्चिम बंगाल राज्ये 94-200 सदस्यीय राज्य विधानसभायां प्रचंडं जनादेशं प्राप्य इतिहासः विनिर्मितः. अनेन स्वाधीनतानन्तरं प्रथमवारं पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपादलं बहुमतेन सत्तायाम् आगतमस्ति. असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वयुक्तेन एनडीए

0: दलेन पुनरेकवारं जनादेशं प्राप्य तृतीयवारं सत्तायाम् आगम्यते, यत्र हि भाजपादलेन त्रिसप्ततिः आसनानि विजितानि। केरलं राज्ये कांग्रेस नेतृत्वेन यूडीएफ इति संयुक्त लोकतांत्रिक घटबंधनेन ऊनशतं आसनेषु विजयं प्राप्य निर्णायकरूपेण सत्तां प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः प्रदत्तः, यत्र च कांग्रेस दलेन त्रिषष्टिः आसनानि विजितानि। पुदुचेरीत्यत्र राष्ट्रिय प्रजातांत्रिक घटबंधनेन एनडीए इत्यनेन त्रिंशत् आसनेषु अष्टादश आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्ट बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रीं टीएमसी नेत्रीं ममता बैनर्जीं 15,000 मतैः पराजितवान्। निर्वाचन सूची विशेष सघन पुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथम निर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य 15-वर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपादलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपादलेन 6-200, तृणमूल कांग्रेस दलेन 80 आसनानि च विजितानि। अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चंद्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहासः विनिर्मितः। राज्ये 34-200 निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन 80 आसनानि प्राप्तानि। भाजपादलस्य वरिष्ठनेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना ऐतिहासिकः अभूतपूर्वः दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिमबंगाल असम पुदुचेरी तमिलनाडु केरलं राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तॄणाञ्च प्रति आभारः प्रकटितः। ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपामुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतनप्रभातस्य सूचकः अस्ति, तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारतश्रेष्ठभारतस्य भावनायाञ्च विश्वासं स्थापितवन्तः।
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य 20+ राज्येषु भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति, तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति। भाजपादलेन पुदुचेरीत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीयमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरीत्यत्र दलस्य प्रभारी निर्मलकुमार सुराना च केन्द्रीय पर्यवेक्षकरूपेण चितवन्तौ। नामद्वयमपि भाजपा संसदीयमण्डलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकमण्डलेन अनुमोदितमासीत्। आईपीएल इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां मुंबई नगरस्य वानखेड़े क्रीडांगणे गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 दिल्ली कैपिटल्स अथ चेन्नई सुपर किंग्स दलयोर्मध्ये दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धा निश्चिता वर्तते इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां।

पार्टी टीवी के सब तो वड्डी पार्टी वजो उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2026 दियां पश्चिमी बंगाल विधानसभा चोणां हमेशा याद रखिया जाणगियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय हथियारबंद फौजां अते उद्योग ने बदलते हालात का विश्लेषण ते समझ विकसित कर लिए। सरकार ने कहा है कि देश भर के LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को LPG की कोई कमी नहीं है ते व्यापारक LPG सप्लाई लगभग 70% तक बहाल कर दी गई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI दुनिया के सब तो वड्डे रियल टाइम भुगतान प्लेटफॉर्म वजो उभरिया है। पंजाब विच नशियां दे सेवन दे प्रभाव ते समाजिक आर्थिक गणना अज तो शुरू हो रही है। राज्यसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सिचिवाल ने बुढ़े दरिया के किनारे वसे पिंडां च गंदे पानी दी निकास लई सिचिवाल मॉडल तहत किए जा रहे काम का जायजा लिया। सारे पंजाबियों नूं बुढ़े दरिया के पहरेदार बनन दा दिता सद्दा। ईरानी समुद्री फौज ने दावा किया है कि उसने हॉर्मूज स्ट्रेट तो लंघन की कोशिश कर रहे अमरीकी समुद्री जहाज नूं दो मिजाइलों नाल निशाना बनाया है। ते मौसम विभाग ने पंजाब विच अज ते भलके गरज चमक ते हल्की बारिश लई येलो अलर्ट जारी किया है। ये सन अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश कर रहे हैं प्रोग्राम सोनी सवेर।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: इस संदेश तो बाद प्रोग्राम सोनी सवेरे एक बार फिर हाजिर है। इस प्रोग्राम में तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते सुन रहे हो। असी हमेशा उन्हां शख्सियतां नूं, उन्हां हस्तियां नूं याद करदे हां जिन्हां दी समाज दे विच, देश दे विच कुछ अजिही देण हुंदी है जिस नूं कदे भुलाया नहीं जा सकता। जदों असी राजनीति दी, आधुनिक भारत दी नींह दी गल करदे हां तां उस दे विच कई अजिहे राजनेताओं दा जिक्र जरूर आउंदा है जो इस दा आधार बने सन, जिन्हां ने विशेष योगदान दिता ते उन्हां दी मिसाल हमेशा दित्ती जा सकती है। इस तरह अज असी याद कर रहे हां अजी शख्सियत नूं जिन्हां दा जीवन सादगी, सेवा ते संघर्ष की मिसाल है, यानी कि ज्ञानी जल सिंह, जिन्हां दा जन्म 5 मई 1916 नूं फरीदकोट इलाके च होया। उन्हां दा नाम जरनैल सिंह सी, पर धार्मिक ख्याल ते धार्मिक ज्ञान होने कारण उन्हां नूं ज्ञानी कहा जाण लग गया। नौजवान जदों सन उदों ही वह आज़ादी अंदोलन के नाल जुड़ गए सन ते ब्रिटिश राज के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई ते समाजिक न्याय ते लोगों के हकों के लिए वह हमेशा खड़े रहे। आज़ादी तो बाद ज्ञानी जैल सिंह ने राजनीति के सरगर्म भूमिका निभाई। 1972 तो 1977 तक वह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। उस दौरान उन्होंने कई विकासी कामों को अगे बढ़ाया। बाद विच वह देश के गृह मंत्री भी बने जिथे उन्होंने अंदरूनी सुरक्षा ते प्रशासन दे विच महत्वपूर्ण योगदान भी दिता ते 1982 दे विच वह भारत के राष्ट्रपति बने। सो उन्हां दा जीवन आम जीवन तो सादगी तो शुरू हो के राष्ट्रपति तक जो उन्हां दा सफर रहा वह काफ़ी चुनौतियां भरिया रहा, काफ़ी संघर्षपूर्ण भी रहा, पर उन्हां दा जीवन सानू ये सीख दिंदा है कि चाहे जिंदगी साधारण होवे पर इंसान अपनी प्राप्तियां दे नाल किसी भी मंजिल तक पहुँच सकता है। उन्हां दे बारे खास तौर पर यह गल कही जाती है कि वह आम लोगों के नाल जुड़े रहते सन ते हमेशा निम्रता दे नाल पेश आते नहीं आते सन। सोने सिर प्रोग्राम तुसीं इस वेले आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते सुन रहे हो। इस गलबात तो बाद हुण एक गीत वल तुहानूं लै चलदे हां ते गीत तो बाद वापस मुड़ांगे होर जानकारी दे नाल, गीत संगीत दे नाल। सुंदरो आकाशवाणी जलंधर ते ये प्रोग्राम सोनी सवेर।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पास

0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल, और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है।

0: पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपरहिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्यभर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
3: देश के 20

0: ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
1: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहाँ आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयीय बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की ये खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है

0: कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो एसआईआर की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI, मौसम के मिजाज पर ये है नवभारत टाइम्स के शब्द।
0: धन्यवाद मुनीश। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BJP set to form government in West Bengal and Assam. NDA retains Puducherry. Congress-led UDF comes to power in Keralam. Hung Assembly in Tamil Nadu. TVK emerges as largest party with 108 seats. Prime Minister Narendra Modi says people have placed trust in politics of performance. West Bengal's industry bodies and trade associations hail BJP's victory. 3 Indians injured in UAE in drone attack by Iran. And in IPL cricket, Mumbai Indians beat Lucknow Super Giants by 6 wickets. And now the news in detail. History has been created in the assembly elections in West

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। पश्चिमी बंगाल के असाम में बीजेपी सरकार बनाने तैयार है। पुदुचेरी में पार्टी सहयोगियों मुड़ सत्ता में वापसी कर रही है। केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने जित हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में टीवीके 108 सीटां जित के सब तो वड्डी पार्टी वजों उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों ने सुशासन की राजनीति से भरोसा जताया है। जंगबंदी लागू होने तो बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई उपर पहले ईरानी ड्रोन हमले च तीन भारतीय नागरिक मामूली जख्मी हो गए हैं। तो आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकटों नाल हरा दिता है। हुण खबरां विस्थार नाल। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चोणां विच भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार भारी बहुमत हासिल

0: गवर्नेंस नीतियों की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश लिए एक नवा सवेरा होया अते लोकां ने भारत दे महान लोकतंत्र कारगुजारी दी राजनीति अते एक भारत श्रेष्ठ भारत दी भावना विच अपना विश्वास प्रगट कीता है।
0: ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: उन्होंने पार्टी वर्करां दा मार्गदर्शन करने लई बीजेपी प्रधान नितिन नवीन की प्रशंसा की। रिकॉर्ड वोटरां दी गिणती का हवाला दिंदिआं प्रधानमंत्री ने चोण कमिशन इसके अधिकारियों पोलिंग स्टाफ और सुरक्षा बलों नूं चोणां दे सुचारू संचालन लई भी वधाई दित्ती। बीजेपी प्रधान नितिन नवीन ने चार राज्यों ते एक केंद्र शासित प्रदेश के लोगों का बीजेपी और एनडीए समर्थन करने लई धन्नवाद किया।
2: पांच राज्यों के

0: उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: उन्होंने पार्टी वर्करां दा मार्गदर्शन करने लई बीजेपी प्रधान नितिन नवीन की प्रशंसा की। रिकॉर्ड वोटरां दी गिणती दा हवाला दिंदिआं प्रधानमंत्री ने चोण कमिशन इस दे अधिकारियां पोलिंग स्टाफ अते सुरक्षा बलों नूं चोणां दे सुचारू संचालन लई भी वधाई दित्ती। बीजेपी प्रधान नितिन नवीन ने चार राज्यां अते एक केंद्र शासित प्रदेश के लोगों का बीजेपी अते एनडीए लई समर्थन करने लई धन्नवाद किया।
2: पांच राज्यों के विधानसभा के चुनाव के संपन्न के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन पांच राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है।
1: सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरलम विधानसभा चोणों में फैसला कुन जत्री राज के लोगों का धन्नवाद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गांधी ने हर यूडीएफ नेता ते वर्कर नूं सख्त मेहनत ते सफल चोण प्रचार लई वधाई दी। उन्होंने कहा कि केरलम विच प्रतिभा ते संभावना मौजूद है और यूडीएफ सरकार कोल दोवां दी सही वरतों लई दूरदृष्टि मौजूद है। केरलम विच राजनीतिक उथल पुथल दरमियान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने अहुदे तों अस्तीफा दे दिता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने उन्हां दा अस्तीफा प्रवान कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन नूं नवी सरकार दे सहुं चुकण तक कायम मुकाम मुख्यमंत्री वजों अपने अहुदे ते बने रहण की बेनती की है। ईरानी ड्रोन हमले तों बाद कल यूएई दे फुजैरा तेल उद्योग खेत्र विच भारी अग लग गई। पिछले महीने जंगबंदी लागू होण तों बाद यह संयुक्त अरब इमरात ते पहला हमला है जिस विच काफ़ी नुकसान होया है। तीन भारतीय नागरिकों मामूली सट्टां लगियां ने ते उन्हां नूं हस्पताल विच दाखल कराया गया है। आबूधाबी विच भारतीय दूतघर ने कहा है कि वह प्रभावित लोगों की सुरक्षा नूं यकीनी बनाने लई स्थानक अधिकारियों के संपर्क विच है। यूएई दे रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कल देश वल आ रही 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 4 ड्रोनों और 3 क्रूज मिसाइलों नूं रोकिया गया है। इस दौरान अमरीका ते ईरान विचकार फौजी कार्रवाइयां दीआं नवीआं चेतावनीआं ते दावियां दरमियान होरमूज स्टेट विच तनाव होर वध गया है। आईपीएल क्रिकेट विच बीती रात मुंबई दे वानखेड़े स्टेडियम विच मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स नूं 6 विकटां नाल हरा दिता है। लखनऊ सुपर जायंट्स वल्लों दित्ते गए 229 दौड़ां दे टीचे दा पिछा करदिआं मुंबई इंडियंस ने 18 ओवरां ते 4 गेंदां विच 4 विकटां दे नुकसान ते ही टीचा हासिल कर लिया। अंत विच चोणवीआं खबरां इक वार फिर सुण लो। पश्चिमी बंगाल ते असाम विच बीजेपी सरकार बनाने लई तैयार है। पुदुचेरी विच पार्टी सहयोगियों नाल मुड़ सत्ता विच वापसी कर रही है। केरलम विच कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने जित हासिल की है, जबकि तमिलनाडु विच टीवीके 108 सीटां जित के सब तो वड्डी पार्टी उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों ने सुशासन की राजनीति ते भरोसा जताया है। जंगबंदी लागू होने तो बाद संयुक्त अरब अमीरात उपर पहले ईरानी ड्रोन हमले च 3 भारतीय नागरिक मामूली जख्मी हो गए हैं। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियम

0: रोजगार या नौकरी नहीं है तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जाएगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश कर रहे हैं पंजाबी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम महक पंजाब दी। इस प्रोग्राम दा पहला गीत शमशाद बेगम दी आवाज़ में सुनते हैं फिल्म भंगड़ा चों।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਅਤੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਗਾਇਆ ਫਿਲਮ ਗੁੱਡੀ ਚੋਂ।

1976 च रिलीज़ हुई फिल्म महबूबा दे गीत अज दे फिल्म संगीत प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। ये फिल्म पुनर्जन्म दी कहानी दे दारस सी ते इस फिल्म नू कई बार मधुमती दे नाल भी तुलना करके देखा जांदा है क्योंकि दोवां फिल्मां दे विच पुनर्जन्म ते अधूरे प्यार दी कहानी सी। इह समां सी जदों राजेश खन्ना उहनां दी फिल्मां बहुत ज़्यादा नहीं हिट हो रही सन, पॉपुलैरिटी थोड़ी उहनां दी घट रही सी, फिर भी इस फिल्म विच उहनां दी एक्टिंग नू काफ़ी सराहाया गया ते इस फिल्म दे गीत खास तौर पर बहुत पसंद किए गए। तो इस फिल्म दी अदाकार हेमा मालिनी हुणा नू भी जो चुनिया गया सी तो उस लई भी बहुत होर एक्ट्रेस बारे सोचा गया सी, पर आखिर दे विच उन्हां नू ही फाइनल किया गया जो कि फिल्म दे बहुत ही सही फैसला भी साबित होया। सो यह फिल्म चाहे उस समय की बहुत वड्डी हिट फिल्म नहीं सी, पर इस फिल्म का संगीत, इस फिल्म की कहानी ते उस कहानी नू प्रेजेंट करन दा तरीका अज भी बहुत यादगार है। अज भी ये फिल्म उसी तरह ही बड़ी उत्सुकता बड़े चाह नाल देखी जाती है। हुण इस फिल्म दा प्रोग्राम दा आखिरी गीत लता मंगेशकर ते साथियों दी आवाज़ विच आओ सुनदे हां।

0: प्रियत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखा है,
1: भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है।
0: दुनिया के मेले में भी हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रहिए।
1: जी, बहुत ही सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सोशल मीडिया और आधुनिकता की दौड़ में लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक पारिवारिक ताने बाने को संभाल कर रखें, खासकर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को जरूर समय दें।
0: अगला संदेश हमें मिला है मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर का। लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी एवं विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुआ कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली लगा। आयुर्वेद के इस गौरवशाली इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता को साझा करने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
1: ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलती। एनसीईआरटी उमंग की पूरी टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आसमान गिरा, ये कार्यक्रम हमें बाल कथा के रूप में बेहद पसंद आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बच्चों के लिए इतनी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी।
1: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, 3 अप्रैल को कार्यक्रम उमंग में वैद्यराज जीवक के बारे में जानकारी सुनने को मिली जो बहुत अच्छी लगी। आपका कार्यक्रम जानकारी से भरपूर होता है। उमंग परिवार के साथ लेखक और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया जी का।
1: कृष्णा पार्क दिल्ली से आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर।
0: आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आपसे निवेदन है इसी तरह से लिखते रहिए और सुनते रहिए हमारा आपका सबका चहेता कार्यक्रम उमंग। स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी कविता से।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं जब ये कविता कही जाए तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये कविता किस पर है। जल निधि चहूं ओर अपार, प्रकृति का ये कैसा विस्तार, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा अनंत संसार।
0: क्या बात है, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा है अनंत संसार। और आगे लिखा है, गहराई इसकी अति गंभीर, रहस्य भरे इसमें शरीर, जीवों का अद्भुत परिवार, सृष्टि का ये अनुपम उपहार।
1: तो श्रोताओ, लगा कुछ अंदाजा?
0: जरूर लगा लिया होगा। यदि आपका अंदाजा समुद्र है तो श्रोताओ आप बिल्कुल सही हैं। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे समुद्र और उसके रहस्यमय दुनिया की। तो आइए जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातों को।
1: तो अजीत जी, पहला प्रश्न ये उठता है कि समुद्र या सागर क्या है?
0: विमलेश जी, कहा जा सकता है कि समुद्र पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल खारे जल का क्षेत्र है।
1: जी,
0: पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है।
1: जी,
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।
1: वो क्या?
0: वो ये है कि कुछ लोग इसे समुद्र कहते हैं तो कुछ इसे सागर कहते हैं।
1: जी,
0: लेकिन महासागर भी तो हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न अजीत जी। देखिए, पहली बात है आकार या क्षेत्रफल। सागर आकार में छोटा होता है, जैसे अरब सागर, और महासागर बहुत विशाल होता है, जैसे प्रशांत महासागर।
0: जी, तो मुझे लगता है कि स्थिति या लोकेशन भी मायने रखती है।
1: जी,
0: जैसे महासागर पृथ्वी के बड़े और खुले हिस्सों में फैले होते हैं, जबकि सागर अक्सर महाद्वीपों के बीच होते हैं।
1: जी अजीत जी, एक और महत्वपूर्ण बात, और वो है गहराई। महासागर अधिक गहरे होते हैं, जबकि समुद्र या सागर थोड़े कम गहरे होते हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सभी सागर अपवादों को छोड़कर महासागरों से जुड़े होते हैं।
0: विमलेश जी, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। आपसे शुरू करें।
0: जी, प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
1: जी,
0: दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये यूरोप और अमेरिका को अलग करता है। अब आपकी बारी है।
1: और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। और ये सभी महासागरों में सबसे गर्म माना जाता है। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका के पास है, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं।
0: और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सबका विमलेश का नमस्कार कीजिए स्वीकार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकी

0: छोटा महासागर है। आपको विशेष रूप से बता दें कि विश्व व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम महासागर और समुद्र ही हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी, श्रृंखला ये भी जानिए मैं। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है,
0: तो प्रश्न है पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
0: श्रोताओं, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा
0: जी।
1: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माय नेम।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाती है और अंत में बड़े मजेदार ढंग से उसे अपने नाम का पता चलता है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं।

0: फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIIT NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: जी
0: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माय नेम।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाती है और अंत में बड़े मजेदार ढंग से उसे अपने नाम का पता चलता है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
5: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माय नेम और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: मौलाना अबुल कलाम आजाद।
1: ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी देता है।
3: मौलाना अबुल कलाम आजाद

0: ये गजल है भारत के मशहूर राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना।
1: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहमदिल थीं। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थीं। बालक अबुल कलाम को पढ़ाई का माहौल विरासत में मिला। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके वालिद को एक दुर्घटना में चोट लग गई। वे इलाज के लिए कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में ही बस गए। अब सवाल बालक अबुल कलाम की शिक्षा का था, तो उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दिलवाई। मजहबी परिवार में पैदा होने की वजह से दीनी तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।
2: मेरा सपना है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और मजहबी इंसान बने। मुझे यकीन है मेरी परवरिश और उसको मिली तरबियत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो बड़ा होकर मेरे सपने को साकार करेगा।
1: पर बालक अबुल कलाम के बचपन के खेल तो निराले हुआ करते।
3: इसको इधर लगा देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो अबुल? ये सारे बक्से एक लाइन में क्यों लगा दिए? रुको, मैं अभी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें।
4: ना ना, ऐसा ना करना फातिमा आपा। ये तो रेलगाड़ी बनाई है मैंने, पता है क्यों?
3: क्यों?
4: ताकि अब आप लोग संदूक पर चिल्ला चिल्ला कर कहें, हटो हटो, रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं।
3: लेकिन भाई यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, हम किससे कहें रास्ता दो?
4: अरे ये तो खेल है।
3: अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो गिर जाओगे।
4: नहीं गिरूंगा आपा, बस आप लोग मेरे बोलने के बाद तालियां बजाएं।
3: क्यों तालियां क्यों बजाएं हम?
4: भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ।
3: अच्छा तो ये बात है।
0: उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी हैरान रह जाते। शायद वो उन खेलों के जरिए ये बताना चाहते थे कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। मासूम बचपन के पास निराले खेलों में एक जिंदगी देखने को मिलती।
1: वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्क शास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी।
0: उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने

0: को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया।
1: उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी।
0: बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
1: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सुफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी, उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
0: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
1: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी

0: एक गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
1: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हों?
0: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
1: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे।
2: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
0: उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
1: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
2: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
0: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उन

0: की इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।
1: ऐसी आला शख्सियतें बार-बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
0: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
2: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान और

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: तुसी सुन रहे सी एनसीईआरटी वालों स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां।

0: चित्रा दी आवाज़ में तुसी खूबसूरत गीत सुनिया फिल्म बॉम्बे चो। हैलो फरमाइश प्रोग्राम, तुहाड़े पसंदीदा गीतां दी फरमाइश पूरी करन दे लई एक बार फिर हाजिर है इस प्रोग्राम च। 0181 3042 173 नंबर मिला के पहले कॉलर दोस्त देखते हैं कि हाजिर ने। हैलो सत श्रीकाल जी, स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? कुलदीप जी, की हाल चाल ने?
1: ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਹੁਤ

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: हाँ जी काफी आवाज चल रही है, मैं खेत है ना बाहर।
1: अच्छा ठीक है ठीक है जी, काम काज करते करते फिर नाल रेडियो सुनते रहते हो?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अचानक फोन लग गया, की दिन हो गया लग गया नहीं, ट्राई कर दे ना।
1: चलो जी, अचानक कई बारी खुशी जो मिलती है ना बहुत बड़ी लगती है।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: गाना कड़े सुनोगे तुसी आज?
0: जावेद अली दे सुनाओ दीवाना कर रहा है।
1: ठीक है जी, शुक्रिया जी बहुत बहुत प्रोग्राम्स कॉल करने के लिए।
0: थैंक यू मैडम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है, वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बनने विजय की पार्टी तमिलगा वित्री कशगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्य विधानसभा में 64 सीटों के

0: बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर बिहार के गया पहुंच रहे हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली आएंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजारा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजारा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 166 अंक गिरकर 77,103 पर और निफ्टी 67 अंक गिरकर 24,053 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीएनएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगा हर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगा हर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी जुड़े हो अपने दोस्त गौरव दे नाल हुण तो लैके शाम 5 बजे तक तुहाडा रेडियो बेली तुहाडे नाल ही रहेगा। फिलहाल समा हो गया है प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। जी हाँ, तुहाडे वट्सएप ते आधारित जिहड़ियां फरमाइशां है उहनां दा प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। ते आओ शुरू करदे हां प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी

पूरा ट्रक न्याणिया दा एक विच दाज दे आया जे आउंदा अतबार ना तैनू मेरे उत्ते नारे देव थरीकियां वाले कोलों पुछ ला तू मटियारे आथण नू लेके जाना उना ले मुर्गी दाना जे घरे पहुंच गए कल्ले लो वोटी।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी कामगार विभाग के मंत्री हंस ल्यूक कैगडेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रवासियों के आवागमन और पलायन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इस संघर्ष में नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होर्मुज जलडमरू मध्य में मुक्त और निर्बाध आवाजाही की भी अपील की। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉ. अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सिया पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने

0: देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते वेड़े।

0: नमस्कार जी, प्रोग्राम बसदी वेड़े लैके मैं हाजिर हाँ अमनप्रीत कौर
1: जी, ते मैं पूनम भी हाजिर हाँ जी। अमन की हाल चाल ने
0: जी? मेरे बिल्कुल चंगे ने पूनम जी। तुसी मैनू ए दस दियो कि अज बड़ा मुस्कुरा रहे हो,
1: तानू मिले आ ना इसलिए
0: जी बिल्कुल ते बाकी जो आपां अपनियां भैणां दे नाल मिलदे आ ना ते चेहरे दे उत्ते मुस्कुराहट है जिहड़ी आप मुहारे ही आ जांदी है।
1: वैसे ना जदों भी भैणां इकट्ठियां हुंदियां ने तां अक्सर ये मजाक कीता जांदा है कि हुण तां भैणां दा प्रोग्राम शुरू हो गया आपस मिल बैठदियां ने तां उहनां दे लई बड़ा तरो ताजा रिफ्रेशिंग माहौल हुंदा है
0: जी बिल्कुल। ते कई वारी चलो हासे माहौल दी गल तां इक पासे है ना, पर देखिया जाए तां भैणां आपस दे विच जदों गल करदियां ने उह किते ना किते बहुत सारियां गल्लां अजिहियां सांझियां करदियां ने जिहदे नाल दूसरी साडी भैण है जिहड़ी उह कुछ सिख जांदी है, ते कई वारी कुछ भैणां दूजियां भैणां दे नाल अपनियां गल्लां सांझियां करके अपनी मानसिक सेहत दा वी ख्याल रख लैंदियां ने।
1: देखो जी, मानसिक सेहत अपने आप ही ठीक हो जाती है जदों असीं दिल की गल कह ली, किसी की गल सुन ली, तो साढ़े मन का बोझ हल्का हो गया, तो फिर मानसिक सेहत अपने आप ही चंगी रहनी है। जिहड़े मनोचिकित्सक ने कहिंदे ने कि जो तुसीं तुहाडे मन ते बोझ महसूस होवे, तुसीं निराश होवो, उदास होवो, अपने मन दे विचार किते लिख लो या फिर उन्होंने किसी नाल शेयर कर लो। सो यह बहुत वधिया गल है कि जो भैणां कितें भी इकट्ठे मिलकर बैठदियां ने आपस में गलबात कर लेंदियां ने तो उदों वह पक्का गल है कि उस तो बाद उन्होंने बहुत हल्का महसूस हुंदा होएगा
0: जी बिल्कुल। तो एक मैनू गल याद आ गई है, एक डॉक्टर के दरवाजे के बाहर लिखा सी, यानी कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा सी कि दिल खोलिया हुंदा जे यारां दे नाल तां अज खोलना ना पैंदा औजारां दे नाल। सो जी जरूर एक दूजे नाल गल है जिहड़ी उह कर लैणी चाहीदी है। चलो ठीक है, एक गल्लों आपां इह वी कहिंदे आ कि अपने बहुते घर दे भेत देण दे नाल मसले विगड़ भी जांदे ने, एक समें सानूं पिछेमानी दा सामना भी करना पै जांदा। सो जी पर जेकर असीं उह गल्लां कर लईए जिहड़ियां गल्लां सानूं किसे कम दे विच मदद कर सकदियां ने तां उह ज़्यादा बेहतरी वल है, ते बाकी जिंदगी दे विच नवांपण भी आउंदा जदों असीं अपनियां सहेलियां अपनियां भैणां ते अपनियां गवांढणां दे नाल बैठ के गल्लां बातां करदे।
1: देखो जी, दो गल ने, एक तां गल इह है कि अपने जीवन च घट्टो घट एक दोस्त अजिहा जरूर बनाओ जिस नूं तुसीं बिना किसी संकोच कोई भी गल सांझी कर सकते होवो। तो दूसरी गल ए भी है कि वाकई तुसी जो गल कही सी कि जेकर असी अपना दिल अपने यारा दोस्तां दे नाल भैणां दे नाल मित्रां दे नाल खोलिया हुंदा तां फिर वो ऑपरेशन थिएटर दी हॉस्पिटल जाण दी लोड़ ना पैंदी। ए वाकई सच्ची गल है, डॉक्टर्स भी इसनूं मानदे ने कि तनाव डिप्रैशन उदासी ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ
0: ਜੀ। ਪੂਨਮ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ

0: सीमित रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
1: जी
0: साढ़े बच्चे ने वो कोई भी विआह शादियां दे विच जाना पसंद नहीं करते, किसी रिश्तेदारी दे विच जाना पसंद नहीं करते,
1: फोन ते
0: उन्हां
1: गल करना पसंद नहीं करते।
0: हाँ फोन दी गल करना भी नहीं पसंद करते। उन्हां नूं मैनूं लगदा है कि अज दे समें च चलो माँ बाप भी इस गल दा साथ दे दिंदे है कि साडा बच्चा जी पढ़ रिहा है, पर किते ना किते बहुत सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां बच्चे सीखण तों वांझे रहि जांदे ने, क्योंकि जिन्ना चिर असीं किसी नूं मिलिए ना, खास तौर ते अपने हाण परवाण नूं ना मिलिए, ते असीं बहुत सारियां चीज़ां तों अवेले रहि जांदे आ, जां असीं इह कह लईए कि अणजाण रहि जांदे आ। सो जरूर इक दूजे नाल मिलना चाहीदा, जरूरी नहीं कि असीं हर रोज़ किसी नूं मिलिए, क्योंकि ज़्यादा मिलण नाल भी क्या प्यार है जिहड़ा ओह घट जांदा है,
1: मतलब
0: इह
1: कि
0: वी
1: एक
0: असीं
1: जिहड़ी
0: नहीं भुल सकदे।
1: खूबसूरत जिहड़ी एक दूरी है ना, उह थोड़ी जिही बनी रहनी चाहीदी है, ताँ कि मिलण दी उत्सुकता भी जिहड़ी है वो बनी रहे।
0: जी
1: वैसे आपां ना मिलजुल के इन्नियां गल्लां बातें कर लईआं ते रूह भी खुश हो गई। एक गीत भी सुन लैंदे हाँ जो यही कह रहा है कि दो पल बह जा कोल वे, सुरिंदर कौर उन्हां दी आवाज़ विच।
0: जी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। श्री मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज IIT मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने

0: नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे, अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 76,790 पर, जबकि निफ्टी 145 अंक लुढ़क कर 23,974 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ये जलंधर केंद्र है। सोते हो आओ एक चात मारते हैं अज दे साडे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां वल।

हुण दो थोड़ी देर बाद यानी दोपहर 1:15 बजे सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीरा लई। बाद दोपहर 2:30 बजे समा होएगा लोग गीतां ते आधारित साढ़े प्रोग्राम रंगली धरती दा, जिहदे विच जीत लाल लहरी ते उहनां दे साथी माता दीआं भेंटां दा गुणगान करनगे। साड़ी दूजी सभा दे शुरुआत दे विच तुसीं सुणोगे पंजाबी फिल्म संगीत 4:02 बजे ते शाम 6:30 बजे रोज़ाना की तरह देहाती प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिहदे विच कम दीआं गल्लां मंडियां दे भाअ दे नाल नाल बरसाती सब्जियां दे कीड़े ते रोकथाम इहदे बाबत डॉक्टर कमलदीप सिंह मठारू होरां नाल कीती गल्लबात सुनाई जाएगी। सत्त वज के 40 मिनट ते इंग्लिश टाक होगी। रात 8 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। और अज रात 9:30 बजे तुसी सुन सकोगे प्रोग्राम खेड संसार स्पोर्ट्स मैगजीन दे। इस प्रोग्राम दे विच तुसी हालिया चल रहे IPL दे उत्ते डिस्कशन सुनोगे, जिहदे विच विवेक महाजन ते अंजुमन मस्सी भाग लैणगे और मॉडरेटर रहणगे बिरेंद्र सिंह। रात 10:02 बजे ते शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना दे तहत अज उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान शास्त्रीय गायन करनगे। राग होएगा दरबारी कनरा। और साडा अज दा आखिरी प्रोग्राम रात 10:30 बजे सरगम सुन सकोगे। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स और एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स ते आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। स्टूडियो कोने के मुताबिक 1:10 हो रहे हैं, तो आओ हुण सुनते हैं प्रदेशक खबरां।
1: आकाशवाणी हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। बीजेपी संसद मैंबर राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक ते राजेंद्र गुप्ता ने अज राष्ट्रपति भवन विखे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाल मुलाकात की थी। पंजाब विच आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली सरकार वल्लों सरकारी तंत्र की कथित दुरवरतों ते चिंता प्रकट की थी। मीटिंग तो बाद पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार ते इल्जाम लाया कि वह हाल ही विच पार्टी छड के बीजेपी विच शामिल होए राज्यसभा संसद मैंबरां नूं निशाना बनाउण लई सरकारी तंत्र की वरतों कर रही है। उन्हें भी कहा कि पंजाब सरकार ते आम आदमी पार्टी बदले की राजनीति भी कर रही है। श्री चड्ढा ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति नूं इन्हां घटनावां ते अपणियां चिंतावां तों जाणू करवाया।
2: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
1: इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी पिछले महीने बीजेपी में शामिल हो गए सूबे तो 6 राज्यसभा मेंबरां बारे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने वास्ते आज राष्ट्रपति नूं मिले। आज साबका राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जन्म वरेगंढ। इस मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन विखे साबका राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते। जलंधर के डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने अज एसटीएम जते संबंधित विभागों के अधिकारियों नूं व्यापारियों दी शिकायतों का पहल के आधार पर हल करन दे निर्देश दिते ने। जिला प्रबंधकी कॉम्पलैक्स विखे वक्ख-वक्ख विभागों के अधिकारियों ते पंजाब राज ट्रेडर्स कमिश्न के नुमाइंदियां नाल मीटिंग दौरान डिप्टी कमिश्नर ने शिकायतों की समीक्षा करदिआं इस गल ते जोर दिता कि ऑनलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों का तय समय के अंदर निपटारा यकीनी बनाया जाए। उन्होंने दस्सिया कि व्यापारियों दी शिकायतों के निपटारे लिए सरकार के पोर्टल से शिकायतें दर्ज की जांदियां ने, उन्होंने योग हल्ले लगातार हर हफ्ते मीटिंगा भी की जा रही ने ता जो व्यापारियों ते दुकानदारां दीआं मुश्किलां समाबद्ध ढंग नाल हल कीतियां जा सकन। पटियाला देहाती अधीन पैंदे पिंड लंघ दी ग्राम पंचायत नूं ओहदे तो तुरंत प्रभाव हेठ मुअत्तल कर दिता गया है। यह कार्रवाई जिला विकास ते पंचायत अफसर पटियाला दे हुक्मां तहत कीती गई है, जिस तहत सरपंच अते पंचायत मैंबरां नूं ओहदे तो तुरंत प्रभाव हेठ मुअत्तल कर दिता गया है। यह कार्रवाई पिंड के वसनीक मेवा सिंह वालों पंचायत खिलाफ की गई शिकायत कारण की गई है। शिकायतकर्ता ने पिंड की पंचायत उत्ते ग्राम सभा का मता पाए बगैर मिट्टी दियां 2000 ट्रालियां वेचण ते नाल ही फंडा की दुरवरतों करन दे इल्जाम भी लाए ने। विभाग वालों जांच शुरू कर दी गई है। DDPO मोहिंदरजीत सिंह ने पिंड की ग्राम पंचायत नूं मुअत्तल करदिआं यह हदायत भी जारी की थी कि इस मुअत्तली अधीन सरपंच ते पंचायत मैंबर ग्राम पंचायत दी किसी भी तरह की कार्रवाई जां मीटिंग विच बतौर सरपंच अते

फौजी वीरो जय हिंद। गौरव दी प्यार भरी नमस्कार और तुहाडे सारिआं नूं बहुत सारा प्यार। प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं फौजी वीरां लई। इह प्रोग्राम है जिहदे विच खास करके असीं अपने फौजी वीरां दा धन्नवाद भी करदे हाँ और उहनां लई गीत संगीत जिहड़ा है उह भी पेश करदे हाँ। ते आओ फिर प्रोग्राम दी शुरुआत करिए। प्रोग्राम दी शुरुआत दे विच जिहड़ा गीत तुहानूं सुणाउण जा रहे हाँ ना, उस गीत नूं गाया है विनोद राठौर ने। जी हाँ, विनोद राठौर एक अजिही आवाज़ जिहड़ी किसी भी पहचान की मुहताज नहीं है। इन्हां दे बाकी दोनों भरा वह भी फिल्म इंडस्ट्री दे विच ने और उन्हां दी भी गल तुहाडे नाल सांझी करांगा। फिलहाल विनोद राठौर जिहड़े 90 दी दशक दे एक प्रमुख है या कवां का एक डूंगे गायक सन, अजे भी वह गायकी करते हैं और खास करके शाहरुख खान की आवाज़ बने। चाहे उन्होंने पहली फिल्म की गल करा जिद दीवाना उन्होंने गीत गाया शाहरुख खान लई और उन्होंने आवाज़ इन्नी कु ढुकती है ना खास करके शाहरुख खान ते कि लोगों लग्या कि ये जेडे गीत ने विनोद राठौर के नहीं, शाहरुख खान की अपनी आवाज़ है। तो फिर उन्होंने ही गाया एक गीत फिल्म बाजीगर दे विचों तुहानूं सुनाइए, क्योंकि बाजीगर दा गीत तुहाडे सारिआं नूं लै जाएगा 90 दे उस दहाके दे विच। ते फिर सुनदे हां फिल्म बाजीगर दा गाया है गीत जिहनूं गाया है विनोद राठौर और नाल उहनां दे अलका याग्निक होरां ने।

प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरा लई। तुसीं हुणे सुन रहे सी विनोद राठौर दा गाया है गीत, और गल चल रही सी विनोद राठौर ते उहनां दे परिवार दी। ते इह दस दवां कि विनोद राठौर नूं जिहड़ी संगीत दी विद्या है ना, इह गुड़ती दे विच मिली है। इहनां दे पिता जी पंडित चतुर्भुज राठौर एक प्रसिद्ध शास्त्री गायक सन, और विनोद राठौर दे जिहड़े भरा ने ना उह वी संगीत दे विच शामिल रहे, और देश दे संगीत लई उन्होंने बहुत काम किया। इन्हां दे वड्डे भरा श्रवण राठौर, जिन्हां नूं असी संगीतकार जोड़ी, मशहूर संगीतकार जोड़ी, 90 दे दशक दी दिल कही जाण वाली जोड़ी नदीम श्रवण दे नाम दे नाल ज़्यादा जानदे आ। 90 दे दशक दी इह जोड़ी जिन्हें आशकी, साजन, राजा हिंदुस्तानी वर्गियां पता नहीं किन्नियां ही फिल्मां दे विच भारती संगीत जड़ा है वह दिता और उसते राज कीता। अप्रैल 2021 दे विच श्रवण राठौर जी का निधन हो गया सीगा। लेकिन अपने सारे वक्फे दे विच, अपने सारे जीवन दे विच उन्होंने भारतीय संगीत लई बहुत काम किया। एक नवे नायाब मोती जड़े सी वह सानू दिते, ते आओ फिर अज उन्हां दा ही गीत जड़ा उन्होंने संगीतबद्ध किया वह सुनते हैं। फिल्म है साजन, और इस गीत नूं गाया है SP बाला सुब्रमण्यम ने। वैसे तो यह गीत दो आवाज़ों के विच है, और लेकिन असी जिहड़ा गीत तुहानूं सुनाउण जा रहे हैं ना वह गीत SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ के विच सुनाउण जा रहे हैं। ते आओ सुनते हैं गीत है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

श्रवण राठौर थे। इन्हां दे एक तीसरे भरा यानी मझले भरा जिन्हां दा नाम है रूप कुमार राठौर। प्लेबैक सिंगिंग दे विच जदों भी अदब की गल करते हैं ना तो रूप कुमार राठौर की गल ना हो नहीं हो सकता। चाहे असी गल करते हैं फिल्म बॉर्डर दे विचों लए गए गीत संदेसे आते दी या अनवर चो लए गए मौला मेरे मौला, होर भी बथेरे कालजे जिहड़े गीत ने ना वह इन्होंने दिते ने। ये तिने भरावां ने मिल के बॉलीवुड नूं संगीत का एक लंबा सफ़र दिता जिदे विच उन्होंने तय किया। श्रवण संगीत निर्देशन दे विच आए रूप कुमार राठौर ते विनोद राठौर ने अपनी गायकी का लोहा मनवाया, जिथे विनोद राठौर ने खुद दीवाना बाजीगर खलनायक वर्गियां फिल्मां दे गीत दिते, उत्थे रूप कुमार राठौर ने भी अपनी आवाज़ दे नाल एक अलग जिहा रिश्ता बना के रखिया अपने स्रोतियां दे नाल। ते आओ फिर उन्हां दे गाए गीतां चों एक गीत सुनदे आ जिन्हों लिया गया फिल्म रब ने बना दी जोड़ी चो, और ये भी गीत जिहड़ा शाहरुख खान दे उपर फिल्माया गया सी। देखो ये भी अपने आप दे विच एक अजिही घटना है जिहड़ी बहुत घट वापरदी है। तिन्नां भरावां ने शाहरुख खान दे लई गीत जिहड़े ने कंपोज़ भी किए ने, और जिहदे विचों विनोद राठौर तां शुरुआती शाहरुख खान की आवाज़ बने, और उस तो बाद रूप कुमार राठौर ने भी अपनी आवाज़ के नाल शाहरुख खान लई गीत गाए। तो आओ फिर उन्हां दा गाया ये गीत सुनते हैं।

0: ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
1: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: इस दौरान पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने भी हाल ही में आप राज सभा संसद मैंबरां दे भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाल मुलाकात की थी। मीटिंग तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिया श्री मान ने कहा कि आप संसद मैंबरां दा बीजेपी च रलेवा गैर संविधानक है ते उन्हां नूं राज सभा तो अयोग ठहराउण की मांग की थी। अज साबका राष्ट्रपति ज्ञानी दयाल सिंह की जन्म वरेगंढ है। इस मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे साबका राष्ट्रपति ज्ञानी दयाल सिंह नूं श्रद्धा दे फुल भेंट किए। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्सएनडीले @EIRRN जलंधर। दो भारतीय पत्रकारां ने देश विच साइबर अपराध का पर्दाफाश करन वाले अपने चित्र आधारित रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट लई वकारी पुलित्सर पुरस्कार जितया है। आनंद आर के सुपर्णा शर्मा नूं नैथली ओ बी को पियरसन दे नाल इलस्ट्रेटिड रिपोर्टिंग अते कमेंट्री श्रेणी विच जेतू ऐलानिया गया। उन्होंने ब्लूमबर्ग लई ए रिपोर्ट तैयार की थी। हनोई आधारित रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल नूं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी विच जेतू ऐलानिया गया। उन्होंने अमरीका दी बॉर्डर पेट्रोल वल्लों गुप्त रूप विच वरते जा रहे व्यापक निगरानी साधना की जांच की, जो सिलविच सिलिकॉन वैली विच विकसित किए गए सन अते बाद विच चीन विच होर विकसित किए गए। इस लड़ी ने चीन अते होर देशों वल्लों उन्हां दी वरतों का भी पर्दाफाश किया। पुलित्ज़र इनाम पत्रकारी के खेत्र विच एक वकारी इनाम है। ये अमरीका विच कोलंबिया यूनिवर्सिटी वल्लों दिता जांदा है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम अज भारत के तीन दिना सरकारी दौरे से बिहार के बोधगया पहुंचे। उन्होंने हवाई अड्डे से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वागत किया। अपनी यात्रा दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनैसको विश्व विरासत स्थान महाबोधि मंदिर विच पूजा करेंगे और बोधगया विच वियतनामी मठ भी जाएंगे। उन्होंने यात्रा के मद्देनज़र बोधगया ते गया विच सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए ने। राष्ट्रपति तो लाम के नाल वियतनामी सरकार के कई मंत्री अते सीनियर अधिकारी अते एक व्यापारक वफद भी आया। राष्ट्रपति अज बाद विच नवी दिल्ली पहुंचणगे। राष्ट्रपति तोलाम दा कल राष्ट्रपति भवन विखे रस्मी तौर ते स्वागत किया जाएगा। बाद विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तोलाम नाल दवल्ले संबंधां दे वख-वख पहलुआं दे नाल नाल आपसी हित ते खेतरी ते आलमी मुद्दियां ते व्यापक चर्चा करनगे। दो अमरीकी नेवी गाइडेड मिसाइल विनाशका ने होर्मस पणजोर नूं सफलता नाल पार कीता है अते अरब खाड़ी विच दाखल हो गए ने, जो कि वाशिंगटन दे प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन दे शुरुआती पड़ाव नूं दर्शाउंदा है। अपाचे हैलीकॉप्टरां अते होर जहाज़ां दी मदद नाल USS ट्रक्सटन अते USS मेसन कल लंघन दौरान छोटियां किश्तियां मिजाइलों के ड्रोनों तो गोलीबारी की लपेट में आए सन। हालांकि दोवां विचों किसी भी जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचे है ते रक्षात्मक प्रणालियां ने आने वाले सारे खतरों को रोकया। इस दौरान टकराव होर्मुज़ पणजोर तो अगे फैल गया है। दक्षणी कोरिया ने पुष्टि की है कि जलमार्ग के खड़े दक्षणी कोरिया के एक समुद्री जहाज़ से एक धमाका होया तो अग लग गई। सवार सारे 24 चालक दल के मैंबर सुरक्षित दसे जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय माली फंड ने कहा है कि जेकर पश्चिमी एशिया टकरा 2027 तक वधदा है तो विश्व आर्थिकता नूं होर भी गंभीर नतीजे भुगतने पै सकते हैं, जिस नाल तेल दीआं कीमतां करीब $125 प्रति बैरल तक पहुँच सकदियां ने। अंतरराष्ट्रीय माली फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना लीना जॉर्जीवा ने कहा कि मौजूदा हालात, जिस विच लंबे समय तो चलन वाला टकराव, तेल दीआं कीमतां $100 प्रति बैरल जां इस तों उपर रहना अते वधदीआं कीमतां शामिल ने कारण पहलां ही IMF वल्लों दसे प्रतिकूल हालात शुरू हो गए ने। भारत सुडान विदेश दफ्तर पद्धर के सलाह मशवरे FOC का नवा दौर कल पोर्ट सुडान में शुरू होया। इस सलाह मशवरे की सह प्रधानगी पश्चिमी एशिया ते उत्तरी अफ्रीका के विदेशी मामलों बारे मंत्रालय के जॉइंट सकत्र ते सुडान के विदेश मामलों के अंतरराष्ट्रीय सहयोग बारे अंडर सैकटरी ने की। सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश विच एक मजबूत खोज ते नवीआं काढ़ां संबंधी इकोसिस्टम बनाउण प्रति सरकार दी वचनबद्धता नूं दोहराया है। अज नवी दिल्ली विच IIT मद्रास टैक सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं श्री प्रधान ने काढ़ां आधारित नतीजे प्रदान करन लई भारत दे खोज सिलसिले नूं अनुकूल

0: आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिद अरब अमारात के इलाके फुजैरा में हमलों की मजम्मत की है, जिनमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में अमन इस्तेहकाम बहाल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के लिए कहा है। अमरीका और ईरान ने खलीज में ताज़ा हमले किए हैं। दोनों ही मुल्क आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जमैका की अपनी हम मनसब केमिना जोन्स स्मिथ से बातचीत की। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तर इक्तसादी रिश्तों के लिए कहा। तमिलनाडु और केरला में असेंबली इंतखाबात के नतीजे के ऐलान के बाद हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी कोशिशें शुरू हो गई हैं। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इख्तरा पर मबनी नतीजे हासिल करने के लिए भारत की तहकीक से मुतालिक इको निज़ाम को अक्सर तब्दील करने की ज़रूरत पर जोर दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ये जलंधर केंद्र है। फौजी वीरो एक बार फिर स्वागत है। थोड़ा दोस्त गौरव बाकी हिस्सा पूरा करन जा रहा है, फिर माफ करना प्रोग्राम फौजी वीरा लई। तो पिछले हिस्से दे विच असीं गल कीती सीगी नदीम श्रवण होरां दी, राठौर ब्रदर्स दी। ये तीनों राठौर भरा जड़े उन्होंने किवें फिल्म इंडस्ट्री नू नायाब मोती दिते। हुण एक होर अजिही फिल्मी भरावां दी जोड़ी दी गल कर रहे हैं। वैसे तो सिर्फ भरा ही क्यों, भैणां भी हैगियां ने इत्थे, उन्हां दी गल करनी भी बनती है। लता मंगेशकर और उन्हां दे नाल आशा मंगेशकर, जिहड़े बाद दे विच तुसीं सारे जानदे हो कि जिन्हां नूं असीं आशा ताई भी कहिंदे आ, पिछे जे उन्हां दा देहांत होया। और मंगेशकर जिहड़े सारे ही भरा भैन सन ना, वह पार्श्व गायकी दे विच पार्श्व गायन दे विच उन्होंने एक वड्डा मील का पत्थर रख्या सी। अगर गल करां इन्हां दी भैन एक होर सन लता जी तो छोटी, जिन्हां नाम सी मीना खडिकर, और मराठी और हिंदी फिल्मों उन्होंने बहुत गाया। आशा भोंसले बारे तो असीं सारे जानते ही हाँ। उषा मंगेशकर इन्हां दी आवाज़ भी बहुत छाई लोगों के विच, और फिल्म जय संतोषी माँ दे विच जिहड़े इन्हां दे गाए भजन अज भी घर घर दे विच उह गूंजदे ने। और इन्हां दे एक भरा हृदय नाथ मंगेशकर जिहड़े सब तो छोटे सन, और उह भी संगीतकार बने। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक आप बहुत वड्डे शास्त्रीय गायक ते नाट्य संगीतकार सन। ते मंगेशकर परिवार का जड़ा योगदान है ना, वो बहुत अमुल है, उन्हें भुलिया नहीं जा सकता। ते आओ फिर शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर दे ही गाए एक गीत दे नाल। इस गीत नू लता मंगेशकर ने गाया, और अगर इस गीत की गल करा ना तो ये गीत हमेशा ही जो भी चलता है रेडियो पर तो सानू लै जाता है 1953 के उस सफर वेल जिदे विच फिल्म अनारकली दे विचों एक गीत आता है। और इस गीत नू संगीतबद्ध किया चितलक्कर ने, रामचंद्र चितलक्कर, और गाया है लता मंगेशकर होरा ने। तो आओ फिर सुनिए एक गीत।

0: ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਰੁਕੋ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।
1: ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ।
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर

0: आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पन्नयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी नीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। यूडीएफ सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वी डी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का

0: आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
3: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
4: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने अमरीका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ

0: छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है। श्रोतियो, समा हो गया है साढ़े प्रोग्राम रंगली धरती का। लोक गीतां नाल सजे इस प्रोग्राम दे विच अज तुसी सुनोगे माता दियां भेटां दा गुणगान। और जो कर रहे ने जीत लाल लहरी ते उन्हां दे साथी, बस इस छोटे जे अंतराल तो बाद असी सुनांगे माता दियां भेटां।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखिरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com या newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: जी आया नूं श्रोतियो, एक बार फिर स्वागत करते हैं प्रोग्राम रंगली धरती, जिहदी शुरुआत करन जा रहे हैं जीत लाल लहरी ते उहनां दे साथियां वालों गाई गई माता दी भेंटां दी। ते आओ फिर माता दियां भेंटां दा करते हैं गुणगान।

ये प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी फिल्म संगीत, और अगला जड़ा थानू गीत सुनाने जा रहे हैं ना, उस गीत नू गाया दलजीत दुसांझ ने। जी हाँ, पंजाब दी आन बाण ते शान दलजीत दुसांझ, और उन्होंने इस गीत नू गाया है। फिल्म जड़ी है ये दसन तो पहले दस दवा कि इस नाम दियाँ उन्होंने दिया तीन फरी फिल्म आ गई हैं, यानी कि ये जिहड़ी फ्रेंचाइजी की मैं गल कर रहा, ये उन्हां दी अपनी फ्रेंचाइजी है जिहदे विच जदों भी वो आंदे ने ना तां लोग जिहड़े ने बस उन्हां दी ही गल्लां करदे ने। हुण वो की गल्लां करदे ने जदों तुसीं गीत सुनोगे, और या इदां कहां क्यों गल्लां करदे ने ये तुहानूं पता लग जाएगा। तो आओ फिर सुनिए ये गीत। इस गीत नूं लिया गया है फिल्म सरदार जी 2 दे विचों, ते दलजीत दोसांझ ने इस गीत नूं बड़े ही खूबसूरत ढंग नाल निभाया है। आओ सुनते हैं।

जी जिवें दलजीत दोसांझ ने अपनी एक फ्रेंचाइजी चला ली, यानी कि उही फिल्मां दी लड़ी नूं अगे चलाया। उदां ही एक होर कलाकार ने जिन्हां ने अपनी फिल्म नूं चौथी बारी लियांदा होया। जी हाँ, तुसीं सोचोगे किहड़े कलाकार दी अज गौरव गल कर रहा, मैं गल कर रहा गिप्पी गरेवाल। जी हाँ, गिप्पी गरेवाल और इन्हां दी फ्रेंचाइजी यानी कि जिहड़ी फिल्म दी मैं गल कर रहा, उसका चौथा पार्ट भी जिहड़ा है आ रहा है। फिल्म है कैरी ऑन जट्टा। जी हाँ, कैरी ऑन जट्टा 1, 2, 3 और होर पता नहीं किन्ने को इन्होंने पार्ट करने हैं, वेख्या वेखण वाली गल होएगी। फिलहाल तुहानू सुनाने आ कैरी ऑन जट्टा दा ही एक गीत जिन्हों गाया गिप्पी गरेवाल ने खुद। ये उहदे विच अभिनय भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और खुद गाते भी ने, यानी कि सारे पैसे अपने को रखते हैं और फिल्म के प्रोड्यूसर भी ज़्यादातर यही होंगे ने। तो आओ फिर सुनिए गिप्पी गरेवाल का गाया ये गीत।

फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माँ है, मंदा किसनो आखिया जा तिस बिन कोई ना है। इस कथन तो भाव है सारे जीव उस इको पिता परमेश्वर दी संतान हैं, कोई भी चंगा ज माड़ा नहीं है। ताते फिर संदेश यही है कि उस अकाल पुरख दी रजा विच रह के सबनू समदृष्टि नाल एक समान समझना चाहिदा है। फरमान है, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देह दिखाई। सर्वण करदे हां भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: एक पिता एकस के हम बारक तू मेरा गुरहाई। इस शब्द का गायन किया सी भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। सबनू एक समान समझण दा संदेश भाई कबीर जी ने भी दिता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने भी यही तत्थ बयान किया है। सुनदे हां हरसिमरन सिंह होरां पासों वार्ता, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए।
1: गुरु नानक देव जी वल्लों उचारे गए शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना 728 उत्ते दर्ज है। ये विचार गुरु साहब द्वारा चितवे गए गुरमुख सचियार अते आदर्शक मनुख की सिरजना अते विहार की दस पाते हैं। जाहिर है कि नवे सिख धर्म अते इस दीयां परंपरावां अथवा संस्थावां सिरजन संबंधी गुरु नानक साहब ने अपने समकाल के वहमां भरमां भेदभाव छूतछात अते होर उल्ट प्रवृत्तियां विच जकड़े हुए मनुखां अते समाज विचों ही नवे मनुख की सिरजना का महान कार्य आरंभिया सी। अपने इन्हां विचारां अनुसार किए जाने वाले यतना बारे ओ समय के ज्ञानवान सिद्धा नाल हुई चर्चा विच अजिहा प्रगटावा करते हैं। सिद्धा वल्लों ये पुछण ते कि वह कौन हन, उन्हां दा गुरु कौन है अते उन्हां दे समाज भ्रमण करन दे मकसद की हन, तो गुरु साहब ने स्पष्ट प्रगटावा किया कि वह तो गुरमुखां यानी सचियार मनुखां की खोज विच निकले हुए हैं। शब्द यानी ज्ञान उन्हां दा गुरु है अते सुरत की अवस्था प्राप्त करना शब्द गुरु की आग्ञा विच रह के ही एक जग्यासु कर सकता है। अजिहे विचारां नूं उन्हां ने गुरमुख खोजत पै उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी ये पुछण ते कि गुरु दे शब्द सुरत विच जुड़िया मनुख इस संसार विच रहिंदिआं किवें अपना पार उतारा कर सकता है, तो गुरु साहब ने फरमाया।

हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। इस शब्द का गायन किया सी भाई बलदेव सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। गुरबाणी मनुख मातर नूं समदृष्ट होण दा संदेश दिंदी है। समदृष्टि तो भाव है सबनों एक समान समझना। फिर ना कोई वैरी लगता है, ना कोई बेगाना लगता है, सारे अपने मित्र ही लगते हैं। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। जदों सतपुरशां दी संगत मिल जाती है तो फिर पराई तात विसर जाती है। सबना नाल बन आउंदी है, बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कौ बन आई। सरवण करदे आ भाई बलबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द।

बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। आप जी सरवण कर रहे सो पाई बलबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ये शब्द।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਨਿਗਮ। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में

0: अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वीवयम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति के हितधारक सलाहकार समिति के बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स CPR के प्रमुख उपयोग और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि हालिया चुनाव परिणामों के मद्देनजर वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनका मानना है कि वोटों की हेराफेरी की गई और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। दिल्ली में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आओ हुण जानते हैं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा, जिस विच होणगीआं कम दीआं गल्लां ते अज दे मंडियां दे भाअ। बरसाती सब्जियां दे कीड़े ते रोकथाम बारे जानकारी देणगे डॉक्टर कमलदीप सिंह मठारू। शाम 7:40 ते अंग्रेजी वार्ता पेश कीती जाएगी शेक्सपियर एंड हिज वर्ल्ड ऑफ थिएटर। वार्ताकार होंगे नीरज कौशिक। रात 8 बजे प्रोग्राम पेश करांगे जिंदगी हसीन है। रात 9:15 आएगा प्रोग्राम स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 तुसी सुनोगे प्रोग्राम खेड संसार। आज दे इस प्रोग्राम दे विच IPL ते एक

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक

0: निदेशक क्षेत्रीय समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां पे जल्दी आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
4: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो देशभक्ति समूह गाना।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: आजो आजो आजो शिंगारा सिंह जी, आजो बच्चे वाले आजो।
1: जय हिंद जी, रुलिया राम जी, जय हिंद।
0: जय जी। शिंगारा सिंह जी, बच्चे वाले की हाल चाल है तेरा?
1: हाल चाल तगड़ा जी, तुसां सुनाओ, ठीक ठाक हो?
0: तगड़ा तगड़ा हाल चाल। देखो, सवाल और जवाब
1: जी,
0: सारी जिंदगी दे विच ही चलता है,
1: हाँ सही गल,
0: क्योंकि जिंदगी अपने आप दे विच ही एक सवाल है
1: हाँ जवाब भी आ,
0: ते जवाब भी है।
1: हाँ सही गल आ।
0: ते इस करके सवाल जिन्हें पाया है ते जवाब भी उन्हें देना है।
1: हाँ सही गल आ।
0: हुण इस तर्ज के उत्ते जिंदगी कढ लो, जां सवाल जिन्हें पाया है ते जवाब तुसी देना है,
1: हाँ
0: जां इस तर्ज ते जिंदगी कढ लो।
1: जी,
0: हुण ये अपनी अपनी शिंगारा सिंह जी हर बंदे दी सोच है।
1: सही गल है,
0: कई तो वह कहें मालिक ते प्रभु ते रख डोरिया आपे आउणगे मेवणे चर के,
1: हाँ सही गल
0: कई
1: है,
0: जिंदगी
1: हाँ
0: नूं इदां कढ के जांदे है, कई जिंदगी नूं इस पक्ष ते लैंदे है कि मालिक ने मैनूं जिंदगी दित्ती है ते मैं इस जिंदगी दा उपयोग किदां करना है।
1: हाँ। देखो, मालक ने जिंदगी दे नाल नाल सोझी भी दित्ती आ, तू अपनी जिंदगी किवें दी बनाउणी आ, ये
0: हाँ,
1: सारा कुछ बंदे नूं सोच दित्ती आ, किसे होर नूं नहीं दित्ती।
0: सो इस करके तुसी बड़ी अहम गल कीती है। दो तरह दे जिदा शख्सियतां दो तरह दियां है,
1: जी
0: शख्स दो तरह दे है। एक तां पहले वाले दिमाग दी वरतों करदे है भी चलो जी हुण जो कुछ है वो तो छड़ देंदे ने,
1: हाँ
0: है कि नहीं? वो भी तर जांदे ने।
1: तरदे आ जी,
0: ये जिहड़ा
1: देखो
0: विच विचाले वाला हिसाब है ना,
1: जी
0: भी अद्धा कु उधर अद्धा कु उधर, अध पचद्धा,
1: हाँ
0: ये अध पचद्धा काम जिहड़ा है शिंगारा सिंह जी बंदे नूं डोब दिंदा है। जां तां फिर समर्पण
1: हाँ
0: जां अर्पण,
1: जी
0: दो ही चीज़ां ने ना।
1: बिल्कुल जी, दो ही चीज़ां ने।
0: सो इस करके जां तां पहले वाला च शामिल हो जाओ भी जो कुछ हुंदा है जिहदा सवाल है जवाब भी उहदा है।
1: देखो जी, कहिंदे गिलास च पानी आ अद्धा गिलास, एक
0: हाँ
1: कहिंदा अद्धा भरिया, एक कहिंदा अद्धा खाली आ, ये
0: हाँ
1: सोच आपो अपनी आ,
0: बिल्कुल।
1: उहनूं किवें लैणा आ।
0: सो इस करके कोशिश ये करनी चाहिए है कि जिदा तुसी कहा कि उन्हें सिर्फ तुहानू जिंदगी नहीं दिती, जिंदगी नू जीउण दा तरीका सलीका एक सोझी बख्शी अदा
1: सही
0: है,
1: गल है,
0: कि वह सोझी दी सूझबूझ का इस्तेमाल करके तुसी जिंदगी नू किस पासे लेके जाने हो।
1: हाँ सही गल।
0: जिंदगी क्योंकि है तो जिंदगी दा मकसद ही लभना है ना, जिंदगी तो सब नू मिली है,
1: क्या
0: कई जिंदगी दा मकसद नू पछाण लेंदे ने, लभ लेंदे ने, वह फिर मकसद नू हल भी कर जांदे
1: हाँ
0: ने।
1: करते हैं
0: कई
1: जी।
0: नू सारी उम्र लगे रहिंदे ने, समझ ही नहीं आउंदी वी यार ये मकसद की है, इहदा मतलब की है।
1: उन्हां दे व्योंतबंदी ने ना हुंदी,
0: हाँ
1: हवा च तीर मारने अलग चीज़ है जी,
0: हाँ
1: किसे टारगेट ते पहुंचना वो अलग चीज़ है।
0: बिल्कुल। जद तक ताड़ा कोई मकसद नहीं, ताड़ा कोई मतलब नहीं, ताड़ा कोई उद्देश नहीं, ताड़ा कोई टारगेट नहीं है,
1: जी
0: फिर तद तक जिंदगी जिहड़ी है कदी ऐस रुख ते कदे उस रुख ते वाली साहब,
1: हाँ
0: फिर इस करके फिर जिंदगी किसी भी पासे नहीं चलती। सही तरीके नाल जिंदगी नू सानू चलाउण लई दो ही पक्ष है, भी जां तां उहदे हवाले कर लो
1: हाँ
0: जां अपनी लियाकत ते सूझबूझ दा इस्तेमाल कर लो।
1: जी।
0: बे जे तुसी कुछ उहदे छड्डी चलोगे तो कुछ अपणियां पाई चलोगे, काम नहीं चलना,
1: देखो, जां अपना बना लो जां किसे दे हो
0: हो
1: जाओ,
0: जो
1: गल इक्को ही है
0: इक
1: जी।
0: पासे तां चलना पैणा है।
1: जी
0: सो इस करके दो जिदा कहिंदे आ ना, दो घरां दा परौणा ही भुखा मर जांदा है, उस हिसाब हो जांदा है।
1: सही
0: सो
1: गल।
0: दो पासे वाला जिहड़ा है स्पष्टता जिहड़ी है अगर नहीं है तुहाडे इरादियां दे विच,
1: जी
0: तुहाडे विचारां दे विच, तुहाडे फैसलियां दे विच, जद तक स्पष्टता नहीं है तद तक तुहानूं जिंदगी स्पष्ट दिखाई दिंदी नहीं।
1: सही
0: शिंगारा
1: गल
0: सिंह
1: है।
0: जी भी जिंदगी की है,
1: हाँ
0: तुहाडे इरादे च स्पष्टता नहीं है,
1: जी
0: हर गल ते तुहानूं शक है, हर गल च तुहानूं संशय है, हर गल च तुहानूं डर है, हर गल च तुहानूं भय है।
1: जी, बंदे दी अपनी कमजोरी हुंदी है जी, जिहड़ा भै बणदा आ, जदों कॉन्फिडेंस आ जाए उस मालिक का, मेहर हो जाए, फिर आपां नूं इदां दी लोड़ नहीं हैगी आपां नूं झिझकण दी जां थिड़कण दी, वो आपे ही बांह फड़ लैंदा।
0: फड़दा है जी, फड़दा भी उस दी माँ है जिहड़ा पता है भी ना ये बोलदा ते ना ये डोलदा
1: हाँ
0: है नहीं,
1: सही गल
0: ये
1: है
0: दो ही बंदे उन्हें पसंद नहीं, ना
1: जी।
0: बोलने वाले ना डोलन वाले। सो इस करके क्योंकि देखो आप वो स्थिर है
1: जी
0: जिन्हें दुनिया बनाई है, तो आप भी तो स्थिरता है उहदे च।
1: बिल्कुल जी।
0: सो इस करके अपनी जिंदगी नू जे आपां वधिया बनाउणा है ते कि

जी सर, मैनूं वैसे गायकी दा शौक भी आ और मेरा कम भी है जी। ते आपां इह कहि सकदे आं कि गायकी करके प्रोग्राम असीं लांदे आं, उहदे करके अपने घर वी चलदे ने, है ना। ते बाकी मैं बचपन तों मैनूं शौक भी बहुत सीगा गायकी दा। मैं छोटी हुंदी जदों टेप रिकॉर्ड वगैरह चलदियां हुंदियां सी, रीलां चलदियां सीगियां, उदों मैं नुसरत फतेह अली खान साहब नूं सुणदी सी और अज्ज वी मैं उहनां नूं ही ज़्यादा फॉलो करदी हाँ।

0: फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना। कस्तूरी कॉटन, इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
1: इस मिशन का उद्देश उच्च उपज देने वाली किस्मां HYV दे अजिहे बीज विकसित करना है जिन्हां ते बीमारियां ते कीड़ियां दा असर ना होवे अते नाल ही आधुनिक फसल उत्पादन तकनालोजियां नूं वड्डे पद्धर ते अपनाउण नूं उत्साहित करना है। इह यतन राज सरकारां, कृषि विज्ञान केंद्रां ते राज खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटियां राहीं लागू कीते जाणगे। इह मिशन सनत नूं घट दूषित कपाह दी सप्लाई नूं यकीनी बनाउण अते उच्च गुणवत्ता वाले कपाह बरामद नूं उत्साहित करन दी वी कोशिश करेगा। इस योजना तों करीब 32 लाख कपाह किसानां नूं लाभ होण अते साल 2031 तक कपाह उत्पादन 498 लाख गन्ना तक वधाउण दी उम्मीद है। यह दरामद कीती कपाह ते निर्भरता घटाउण अते विदेशी सिक्के नूं बचाउण विच वी मदद करेगा। श्री वैष्णो ने दस्या कि गन्ना रुत साल 2026-27 लई ढुकवें ते फायदेमंद मुल FPR नूं वी मंजूरी दे दित्ती गई है। इस नाल करीब 32 लाख किसानां नूं फायदा होएगा। केंद्रीय मंत्री ने मंत्री मंडल वल्लों लए गए होर वड्डे फैसलों बारे भी जानकारी दित्ती।
0: आज के फैसलों में जो 10 बड़े फैसले लिए गए, करीब करीब 1,52,000 करोड़ रुपए के फैसले हैं ये। इसमें किसानों के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी का, कपास क्रांति का फैसला है, फिर शुगर केन का जो नया सीजन है उसमें करीब शुगर केन के किसानों को 1,00,000 करोड़ के आसपास का टोटल बेनिफिट मिलेगा। जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बनाई गई है, उसका आज फैसला लिया गया 18,000 करोड़ रुपए का। शिप रिपेयर फैसिलिटी वाडिनार में 1,570 करोड़ रुपए का। 2 सेमीकंडक्टर के नए प्रोजेक्ट्स क्रिस्टल और सुची, ये दोनों आज अप्रूव हुए। और रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 3rd और 4th लाइन के, और जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला लिया गया है, जो आज के बड़े फैसले में शामिल है।
1: विधानसभा चोणां दे नतीजिआं दे ऐलान तों बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु ते केरलम विच सरकार दे गठन लई राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईआं ने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणां विच भाजपा दी शानदार जित तों बाद नवीं सरकार दे गठन अते राज विच सहुं चुक समागम दीआं तैयारियां जोरां ते ने। नवें कैबिनेट मैंबरां ने इस महीने दी 9 तरीक नूं गुरदेव रविंद्र नाथ टैगोर दी जयंती ते सहुं चुक्कण दी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे समारोह विच शामिल होण दी उम्मीद है। इस दौरान भाजपा ने पश्चिम बंगाल विच विधायक दल के नेता की चोण लई सीनियर पार्टी नेता ते केंद्रीय मंत्री अमित शाह नूं केंद्रीय निगरान नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नूं राज विच केंद्रीय सह निगरान नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा नूं असाम विच विधायक दल के नेता की चोण लई केंद्रीय निगरान नियुक्त किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नूं राज विच केंद्रीय सह निगरान नियुक्त किया गया है। इन्हां नामां नूं केंद्रीय निगराना बारे BJP पार्लियामानी बोर्ड ने मंजूरी दित्ती है। तमिलनाडु विच अदाकार तो सियासतदान बने सी जोसफ विजय दी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम 108 सीटां जीत के राज दी सब तो वड्डी पार्टी बन के उभरी है। नवें चुने गए TVK विधायकां ने चेन्नई दे नेड़े पनायूर विच पार्टी सदर मुकाम विखे विधायक दल दी मीटिंग विच श्री विजय नूं रस्मी तौर ते अपना नेता चुनिया है। केरलम विच कांग्रेस दी अगवाई वाली UDF सरकार दे गठन ते गैर रस्मी चर्चा जारी है। पश्चिम बंगाल विच ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री दे अहुदे तों अस्तीफा देण तों इनकार कर दिता है अते ऐलान कीता है कि ओह हाल ही दे चोण नतीजिआं दे मद्देनज़र अस्तीफा नहीं देणगे, क्योंकि उन्हां दा मनणा है कि वोटां जबरदस्ती लुटियां गईआं सन ते पूरी वोटिंग प्रक्रिया विच धांधली कीती गई सी। अज कोलकाता विच पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं उन्हां कहा कि उन्हां दी पार्टी नहीं हारी है। बनर्जी ने चोण कमिशन ते पक्षपात दा इल्जाम लाउंदिआं कहा कि इसने भारत दे लोकतंत्री इतिहास विच इक काला अध्याय सिरजिआ है। भाजपा ने ममता बनर्जी दे बयान दी सख्त नुक्ताचीनी की है। भाजपा ने कहा कि अस्तीफा देण जां ना देण, मौजूदा विधानसभा दा कार्यकाल इस महीने दी 7 तरीक नूं खत्म हो रहा है, उस तों बाद कोई भी इस सदन दा मैंबर नहीं रहेगा। भाजपा नेता बिमल शंकर नंदा ने आकाशवाणी नाल गलबात करदिआं कहा कि ममता रुकावट पैदा करन अते लोकतंत्र दा मजाक उड़ाउण विच सफल नहीं होणगे। उन्हां जोर दे के कहा कि अजिही अणचाही स्थिति नाल नजिठण लई साडे संविधान विच प्रबंध ने। ममता बनर्जी दे इस इल्जाम कि भाजपा वख वख थावां ते उन्हां दे पार्टी दफ्तरां ते कब्जा कर रही है, श्री नंदा ने कहा कि इह सरासर झूठ है। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुण रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। बिहार विच 7 मई नूं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगवाई वाले मंत्रिमंडल का पसार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा प्रधान संजय सरोगी ने इस बारे जानकारी दित्ती।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, NDA के सभी बिहार के

0: जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई दे फुजेरा ते हुए हमले की साखना खेती की है, जिसके नतीजे वजो तीन भारतीय नागरिक जख्मी हो गए सन। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकारन योग है। उन्होंने जोर दे के कहा कि भारत यूएई नाल दृढ़ एकता में खड़ा है ते गलबात ते कूटनीति राही सारे मुद्दों के शांतिपूर्ण हल लई अपनी हमायत दर्शाता है। भाजपा संसद मैंबर राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने अज राष्ट्रपति भवन विखे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाल मुलाकात करके पंजाब विच आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली सरकार वालों सूबे के सरकारी तंत्र की कथित दुरवरतों से चिंता प्रगट की। मीटिंग तो बाद पत्रकारों नाल गलबात करदे राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार से इल्जाम लाया कि वह हाल ही विच पार्टी छड के भाजपा विच शामिल होए राज्यसभा संसद मैंबरां नूं निशाना बनाउण लई सूबे दे सरकारी तंत्र की वरतों कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार ते आम आदमी पार्टी बदलाखोरी की राजनीति कर रहे ने। श्री चड्ढा ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति नूं इन्हां घटनावां तों जाणू करवाया ते अपनी चिंता प्रगट की है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा मैंबरों के भाजपा में शामिल होने बारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाल मुलाकात की थी। मीटिंग तो बाद पत्रकारों नाल गलबात करदिया श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संसद मैंबरों का भाजपा में रलेवा गैर संविधानक है, उन्होंने राज्यसभा तो अयोग ठहराने की मांग की थी। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 9 मई तक उत्तर पश्चिमी भारत में वध तो वध तापमान में 4 से 6 डिग्री सैलसीयस तक हौली हौली गिरावट आने की पेशीनगोई की है। मौसम विभाग मुताबिक कल तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर ते हिमाचल प्रदेश में इस तरह के मौसम के हालात रहने की संभावना है। खेडा में भारत ने मर्दा दे ICC T20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग विच सिखर ते अपना स्थान बरकरार रखा है। भारत ने मार्च विच अपने T20 विश्व कप खिताब नूं सफलता नाल बरकरार रखने वाली पहली टीम बन के इतिहास रचा सी ते नाल ही इस नूं रिकॉर्ड तीजी बार जितया सी। इस प्राप्ति दे नाल भारत 275 रेटिंग अंकों दे नाल रैंकिंग विच सिखरले स्थान ते बनिया होया है। इंग्लैंड 262 अंकों नाल दूजे स्थान ते जदों कि आस्ट्रेलिया 258 अंकों नाल तीजे स्थान ते है। IPL क्रिकेट में अज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम विखे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स नाल हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीत के चेन्नई सुपर किंग्स नूं पहला गेंदबाजी करने लिए कहा है। आखिर च खास खबरें एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अज 1,52,00,000 रुपए नाल 10 वड्डे फैसलों नूं मंजूरी दी है। कपाह खेतर लई 5,609 करोड़ रुपए के खर्च नाल कपाह उत्पादकता मिशन कपास क्रांति नूं मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु ते केरलम विच विधानसभा चोणां दे नतीजियां दे ऐलान तों बाद सरकार दे गठन लई सियासी गतिविधियां तेज़ हो गईआं ने। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विच विधायक दल दे नेता दी चोण लई सीनियर पार्टी नेता ते केंद्रीय मंत्री अमित शाह नूं केंद्रीय निगरान नियुक्त कीता है। ते भारत ने मर्दां दे ICC T20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग विच सिखर ते अपना स्थान बरकरार रख्या है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 होएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। साडे अगले ऐलान का इंतजार करो।
3: गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी जलंधर। इन टुडेज प्रोग्राम वी ब्रिंग यू एन एंगेजिंग इंग्लिश टॉक बाय नीरज कौशिक ऑन द थीम शेक्सपियर एंड हिज वर्ल्ड ऑफ थिएटर। Through this talk, he explores the timeless genius of William Shakespeare and the enduring charm of his theatrical world. Stay tuned and enjoy the presentation.
4: He wrote plays from 1589 to 1613. So this bard had less than 25 years and wrote about 36 plays. He wrote comedies, romantic comedies, historical plays and tragedies, and he created a world of his own. But the same was created from what he saw, read, or existed around him. His plays are a testimony of great observation that he had, and he used it with great writing flair to create a world full of drama, humor, comedy, tragedy, and gave his version of history too. In the play As You Like It, he writes, "All the world is a stage." He says, "All the world's a stage, and all the men and women

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है।

जी हाँ, आने वाला पल जाने वाला है। ए पल किन्नी जल्दी निकल देने। 8:15 बजे साडा प्रोग्राम शुरू होया सी ते हुण देख लो, आधा घंटा गुजर रहा और प्रोग्राम ख़त्म करन दा टाइम आ गया है। तो ए पल ऐसे तरह ही गुजर रहे ने और जिंदगी भी पल पल करके गुजर रही है। तो इन्हां पलां नूं असीं जी लईए, जिंदगी जिन्नी कि मिली है उसनों माण लईए। तो इस आखिरी गीत दे नाल इस जिंदगी दे सफर नूं होर खुशनुमा मनाने हैं। सुन दें जी किशोर कुमार की आवाज़ च, जिंदगी एक सफर है सुहाना।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 8:45 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਤੇ 9:15 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी

0: एलईडी डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: दो नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से दो में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का। और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक

0: बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: पुदुचेरी में मनातीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि ये सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NEC ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स EGR को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है।

0: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की, इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0. to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to 2 more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured 3 internationals, calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. Political activities intensify for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. And in cricket, India retain its top position in ICC Men's T20 rankings. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
2: 5,660 crore rupee ka.
3: This project is worth 5,660 crore rupees and consists of 3 components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores.
1: The scheme aims to develop high-yielding variety seeds that are resistant to diseases and pests while promoting the large-scale adoption of modern crop production technologies. The scheme is expected to benefit around 32 lakh cotton farmers and boost cotton production to 498 lakh bales by 2030-31. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. The minister shared that the scheme aims to provide credit guarantee support to help businesses manage short-term liquidity mismatches arising from the West Asia crisis. Under the scheme, 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The guarantee coverage will be

प्रोग्राम सरगम दा अगला नगमा फिल्म सच्चा झूठा तो आवाज़ा मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर दियाँ, गीत दे बोल इंदीवर ते म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी दा।

सरगम दा अगला नगमा पेश है फिल्म नागिन तो, आवाज़ा आशा भोसले ते मोहम्मद रफ़ी दियाँ, गीत बोल वर्मा मलिक दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दा।

सरगम दा अगला नगमा पेश है फिल्म नागिन तो, आवाज़ा आशा भोसले ते मुहम्मद रफ़ी दियाँ, गीत बोल वर्मा मलिक दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दा।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र

0: बिल्कुल जी, छला गीत है जो कह रहे थे गुरदास मान साहब की आवाज़ में प्रोग्राम चल रहा है जी। सौगात मैं थोड़ा दोस्त अरुण है सुरे थोड़े नाल बढ़िया हुआ है जी, तो अगले दोस्त भी आ गए ने जी। हेलो
1: हेलो, मेरी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सौगात जी।
1: धन्यवाद जी, शुक्रिया, मेहरबानी। सुखबीर
0: जी कौन गल कर रहे हो, कितों गल कर रहे हो?
1: सिंह शादरी बोलदा मेरे सिंह। हेलो,
0: हाँ जी, वाह जी वाह, शाजली साहब की हाल चाल ने थोड़े?
1: ठीक है जी? चुप्पे हो गए, सीमा अपनी किधर
0: नहीं
1: भागे?
0: नहीं बगया मैं कितने नहीं, मैं तो इतने सीगा थोड़ी गल ही सुनता ही। सो
1: अच्छा,
0: अज बहुत दिनों के बाद हाजिरी लवाई, की गल कितने रहे हो?
1: बस जी, काम च बिजी सी।
0: अच्छा, मैसेज तो मेरे ख्याल में थोड़े आते रहे व्हाट्सएप पे, पर फोन कॉल अज बहुत देर बाद की तुसी।
1: हाँ जी हाँ, कई बार जागते रहे, ला लो मैं फोन।
0: चलो
1: बाकी
0: बहुत
1: जलंधर
0: बढ़िया।
1: रह गए जी, कहे चैनल जी का फतेह दिलाने वास्ता, और चाहे लखी चैनल हो गए, पर ये रीस नहीं शायद कोई कर सकता।
0: बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा। ते केड़े गीत की फरमाइश लेके आए हो फिर?
1: किन्ने वधिया बाजा ने जी, पूनम मैडम जी हो गए, पूजा हांडा जी हो गए। गाना
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: ला दो जी, मैनू अंकल अली बाल का ला दो जी। चाह
0: चाह, क्या बात है जी, बिल्कुल ठीक है जी। आपा फिर तुहाडे लिए चाह रेडी करते हैं, ते कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया जी।
1: ठीक है जी,
0: थैंक यू जी, थैंक यू।
1: ओके।

0: अभी बिटू भाई दी भी कॉल आ गई,
1: बिल्कुल भाई,
0: सो
1: बिल्कुल
0: आज टाइम ना लिया आ गई ते केड़े गीत की फरमाइश लेके आए हूँ।
1: बिल्कुल।
0: बहुत शुक्रिया जी, मैं थोड़े लिए गीत प्ले करने जा रहे हैं, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके जी, बाय
0: थैंक
1: बाय।
0: यू जी, थैंक यू।

0: बिल्कुल जी, हुस्न जवानी मालो माल है तेरी मतवाली चाल की तो जगह हर पंजाबन साहब की आवाज़ सभी प्रोग्राम चले जी। सो कार मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वे थोड़े नाल पढ़िया हुआ तो दोस्तों दी कॉल्स भी हाले तक आ रही हैं। बड़ी खुशी होंगी है जो दोस्तों की कॉल्स लेट आर्स तक आदि है। सो एक हौसला जहा मिलता भी असी कल्ले नहीं इतने प्रोग्राम कर रहे, सानू कोई ना कोई इतने बैठ के सुन भी रहा। सो अगले दोस्त भी पहुँच चुके हैं, पहले आप ही देखते हैं कौन आए हैं। हैलो
1: हेलो चरण सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुकात विच।
1: धन्यवाद सर जी।
0: जी कौन गल कर रहे हो?
1: डेरा कॉलोनी फाजिलका तो धर्मा सागर बोल रहा सर जी।
0: वाह जी वाह, धर्मा सागर जी अज बहुत लेट हो गए तुसी।
1: हां जी,
0: मैं कह जी अज बहुत बहुत
1: रोड डेली।
0: अच्छा नहीं, बड़ी अज बहुत लेट हो गए तुसी।
1: नहीं कॉल लगी मैं लगी, देखो ही खुशी मन में बहुत जी जब नए दोस्त जुड़ गए।
0: ये भी गल सही है जी, बिल्कुल सही गल है।
1: परिवार बड़ा हुंदा ते बहुत खुशी हुंदी है।
0: चलो बहुत वधिया गल है जी, ते अज केड़े गीत दी फरमाइश लेके आए हो फिर?
1: की सुनावे सर जी, मैनू पुछो
0: तुम। बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करन जा रहा हूं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू जी।

बेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। ए फरमान नाम दी मेहमानू बयान करदा है। गुरु साहिब, भगत साहबान, भट साहबान अते होर अनन प्यारे गुरसिखां ने नाम दी महिमा बयान कीती है। प्रभु दे अनन प्यारे भगत भगत नामदेव जी राग तिलंग विच उचारित शब्द विच उस प्रभु दे नाम नू अपना सहारा बयान करदे हन। आप जी अनुसार प्रभु दा नाम इस तरह है जिस तरह वेखण तो असमर्थ व्यक्ति वास्ते डंगोरी दा सहारा, अर्थात प्रभु दा नाम ही आधार है। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा।

0: तेरा नाम हुंदकारा। आप जी सरवण कर रहे सो भाई मनजीत सिंह ते उना दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द। परमात्मा दे नाम दा रंग सच्चा रंग है, मजीठ रंग है। बाकी दे रंग कसुंबड़े दे रंग वांगू ने, थोड़ चिरे हुंदे ने, उत्तर जांदे ने। प्रभु दे नाम रंग विच रस भी आउंदा है। प्रभु दे नाम दा रंग सुरंग है, भाव चंगा रंग है। तां ते फिर जिहबा नू इसे रंग दे विच ही रंगना चाहिदा है। सुनदे हां तृप्ता देवी होरां पासों वार्ता। रंगीले जिहबा हर कै नाए।
1: विचार अधीन पावन पंक्ति भगत नामदेव जी द्वारा राग भैरों अंदर उचारण कीती गई है अते शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1163 ते सुभायमान है। गुरबाणी अंदर नाम सिमरन सिर्फ बारी अर्थां विच ही नहीं बल्कि इसका संबंध अंतरीव अते समुच्चे भावां नाल हुंदा है। हरी दा नाम सिमरन एक अजही साधना है जिस नाल कुमत दी मैल दूर हुंदी है अते सूखम ज्ञान दा प्रकाश हुंदा है। हरी नाम दी महिमा दा गुणगान करदे होए भगत नामदेव जी फरमाउंदे हन कि मैं अपनी जिहबा नूं प्रभु दा नाम सिमर सिमर के उस सोहणे हरी दे रंग विच रंग लिया है। होर दुनियावी अते अनरस आरां विच लगी रसना व्यर्थ है। सिर्फ हरी दा नाम सिमरन ही वासना रहित अवस्था पैदा कर सकता है। होर करोड़ां देवी देवत्यां दी पूजा भी मिल के उस हरी नाम दी बराबरी नहीं कर सकती। पवित्र रसना तो कीता गया हरी नाम दा जाप ही उस निर्गुण स्वरूप व्यापक प्रभु दी उपासना अते भगती है। जेड़ा जीव उस जगत दे स्वामी पालनहार प्रभु नूं तनो मनो स्वास स्वास सिमरदा है ओ जन्म मरण दे सारे डरां तो दूर रह के खुशी अते आनंद दी अवस्था विच विचरदा है। नाम सिमरन दी बरकत नाल उस दे अंदर दी तृष्णा अग्नि ठंडी ठार हो जांदी है। इस प्रथाए राग सोरठ अंदर 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे हन जाकै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावै बहुर न तृष्णा भुखी। सृष्टि दी सारी रचना उस हरी दे नाम तो ही उपजी है। ए सारा संसार आकाश पाताल सब उसदा नाम ही है। नाम साधना चित साधना है। ए अमली जीवन है। मन नूं पल प्रफुल्लित करन दी किरिया है। उस प्रभु दे नाम नूं हिरदे अंदर वसाउणा उस नूं हर थां हाजर नाजर जाण के तन अते मन नूं इक सुर करके उस दे चरण कमलां नूं अपने हिरदे अंदर वसाउणा ही असली प्रेमा भगती है। जिस जीव ते ओ हरी आप किरपा करदा है ओ उस दे नाम नूं मन विच वसा के जीबा नाल जाप करके मौत दे डर दी फाही नूं कट लैंदा है अते अपने आप नूं उस हरी दे रंग विच रंग लैंदा है। गुरबाणी फुरमान है मन मेरो गज जिहबा मेरी काती मप मप काटो जम की फासी कहा करो जाती कह करो पाती राम को नाम जपो दिन राती। जेड़ा जीव गुरु दी मत उपर चल के उस हरी दे नाम नूं अपने हिरदे अंदर वसा के चलदा है उस दे पंजे ज्ञान इंद्रे उस दे सेवक बन जांदे हन अते परमात्मा दे नाम दा आनंद उस दे हिरदे अंदर वस जांदा है। बहुत खुआर हुंदे हन ओ जीव जो दुनियावी रसां विच लिप्त रहिंदे हन। प्रभु नाम दी बरकत नाल जीव दा दुनियावी रसां दा चस्का खत्म हो जांदा है ते

तन तन है मेरी जिंदड़िये, गुण गावे हर प्रभ केरे राम। आप जी सरवण कर रहे सो भाई इकबाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। बाणी के बोहित साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी राग बिलावल विच उचारित शब्द विच फरमाउंदे ने कि प्रभु दा नाम जपिया तन तो रोगां दी निवृत्ति हुंदी है, अग्ञान मनफी हुंदा है ते समस्त चिंतावां दूर हो जांदियां ने जदों प्रभु दी शरण लई दी है। तज अभिमान अरचिंत बिरानी साधह सरन परे, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए। सरवण करदे आं भाई दविंदर सिंह सोढ़ी ते उन्हां दे रागी जत्थे पासों ये शब्द।

तज अभिमान अर्चिंत बिरानी, साधह सरन पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम, तंते रोग खए। आप जी सरवण कर रहे सो भाई दविंदर सिंह सोढ़ी ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया।

0: दिए पड़पड़ परिये साथ, पड़पड़ बेड़ी पाइए पड़पड़ करिए खात। पढ़िए जेते वर्ष वर्ष, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख एक गल और हो में चखना जा।
1: पहला लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया, बहुत तीर्थ भव्या ते तो लव्या। बहु भेख किया देही दुख दिया, सोहवे जिया अपना किया।

0: मन तन तेरो प्राण एक है सूत है जहान। कमनी उपमा देओ बड़े ते बढ़ान, जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ। अकल कला है प्रभ सर्व को तान, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार। एक जी क्या बखान है हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार। एक जी क्या बखान है हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार।
1: निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी, हरखवंत अनंतर निर्मल बेगासी। गुण गावे बे अंत अंत इक तिल नहीं पासी। जां को हो हे कृपा सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी। तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो। हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो फिर हो। तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो। हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो फिर हो।
2: सत सत हर सत सत सते सत फणिया। दूसर आन न अवर पुरख पौरातन सुनिया। अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए। जेह रसन चाखियो तेह जन तिपत अग

सोते दारा सेउ प्रीत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई।

प्रभ अंतर जामे नानक के बेनंती स्वामी देहो भगत प्रभ अंतर जामी नानक की बेनंती स्वामी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत साधना माया साध संग सब दुख मिटाया।

0: नानक में शरीर का एक रतिकृतवा हो। जुग जुग फेर उठाइए ज्ञानी बुझेता है, सजुर का तरम गिरधवा हो। तेरे तेरस जते का जोर गिरधवा हो, धुआ पूरा तपे का सत गिरधवा हो। कल जुगरा सगन का कूड़ गैरथवा हो।
1: भोला पहला शाम कहे सितंबर स्वामी, सच में है छह सच रहे सबको सच समावे। रिग कह रहा प्रभुर राम नाम देवा मैसूर, नायले प्रस्त जाहे नानक तो मुख अंतर पाहे। जुज में है जोर छड़ी चंद्रावल, कान कृष्ण जादम वाया। पार जात गोपी ले आया, बिंद्रावन में रंग किया। कल में बेदे थर्पण हुआ, नाव खुदाई अलोह पया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी नियम लिखिया।
0: चारे वेद होए सचार, पढ़े गुण है तीन चार विचार। पाओ

पैदा सिमर रुख सराय रा अत दीर्घत मोच ओ जा व्यास कर जाय निरा से कहत फल फिक्के फल बक बके कम नाया बेपत मिटती विनान का गुण चंगाइया तत सबको नवे आपको।

सह हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौं श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै।

देशाह दान प्रसादान दान सिरदान नाम दान सिर अमृत सार साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगा जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो।